लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। हजारों गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। तुर्की समेत 8 ममालिक ने मस्जिद अक्सा पर इश्तियाल अंगेज धावों के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सो मोतेकी ने फलस्तीन के लिए बैन अल-अक़वामी हमायत में मजबूत अंदाज में इजाफे की उम्मीद जाहिर की है। और अब खबरें तफसील के साथ। हजारों गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। 3,200 से जायद गैर कानूनी आबादकारों और कौमी सलामती के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गवीर ने यहूदियों की तशाबाओ तादील के दौरान मशरकी अलकुद्स में वाक़ मस्जिद अक्सा पर छापा मारा। इसराइली पुलिस ने फलस्तीनी नमाजियों पर सख्त पाबंदियां आयद की। वीडियो मनाजर में यहूदी आबादकार मस्जिद के सहन में इज्तमाई दुआ करते, इसराइली परचम लहराते और कौमी तराना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुर्की समेत 8 ममालिक ने मस्जिद अक्सा पर इश्तियाल अंगेज धावों के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़राए खारजा ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। इन 8 ममालिक ने इसराइली वज़रा और आबादकारों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर मारे गए बड़े पैमाने के दावों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में मस्जिद अक्सा के मुसलमानों की इबादत का होने पर जोर दिया गया और कहा गया है कि इसराइल की अलकुद्स की तारीखी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश नाकाबले कबूल है। काबस कुव्वत इसराइल से अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सो मोतेगी ने फलस्तीन के लिए बैन अल-अक़वामी हमायत में मजबूत अंदाज में इजाफे की उम्मीद जाहिर की और कहा है कि दो रियासती हल के नफाज के लिए फलस्तीन का बरकरार रहना नहायत जरूरी है। जापानी सरकारी नशरियाती इदारे NHK के मुताबिक मोतेगी ने यह बयान बुध के रोज फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मैनिला में मुनक़दा फलस्तीन की तरक्की के लिए मशरकी एशियाई ममालिक के दरमियान तआवुन कॉन्फ्रेंस के वजारती इजलास की मुश्तरका सदारत के दौरान दिया है। फलस्तीन की हिमायत पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंसी फ्रेमवर्क का आगाज 2013 में जापान की क़ियादत में किया गया था। इजलास में फलस्तीनी अथॉरिटी और मशरकी एशिया के ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर जोर देते हुए मोतेगी ने कहा है कि ये फ्रेमवर्क दरमियानी और तवील मुद्दत में इंसानी वसाइल की तरक्की के जरिए फलस्तीन के रियासती इदारों की तामीर और रियासत बनने की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने सेहत, तालीम, ज़राअत और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की तरक्की को इसकी नुमाया मिसाल करार दिया है। मोतेगी ने मजीद कहा है कि शराकत दार ममालिक अपनी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए फलस्तीन की मदद के लिए मुश्तरका यानी सैफरी की तावन की शक्ल में काम करना नहायत अहम है। वाज़ेह रहे कि जापान मुसलसल दो रियासती हल की हिमायत करता आया है, ताहम इसका कहना है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुनासिब वक्त और तरीकाकार का जायजा ले रहा है, इसलिए इसने अब तक फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। टोक्यो ने 1993 से अब तक फलस्तीनी अवाम को 2.8 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद फराहम की है। इस इमदाद में से तकरीबन 410 मिलियन अमरीकी डॉलर अक्टूबर 2023 से अब तक भेजी गई इंसानी इमदाद और इमदादी सामान पर मुश्तमिल है। फलस्तीन वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली इलाके में एक बच्चे समेत 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया और इनकी लाशें भी वर्सा के हवाले नहीं की। वजारत सेहत ने जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा है कि इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान सरकारी राबता इदारे सिविल अफेयर्स जनरल अथॉरिटी ने इतला दी है कि इसराइली फौज ने फायरिंग करके नाबलूस के मशरक में वाक़ कस्बे बैत फोरिक में 20 साल महमूद हुसैन अबू समरा और 16 साल मोहम्मद सामर मिलिता को कत्ल कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जनीन के मशरक में हद्दाद जंक्शन के करीब इसराइली फौज ने एक और 24 साल फलस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। फलस्तीन के सरकारी खबर रसां इदारे वफा ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से शाया करदा खबर में कहा है कि इसराइली फौज ने जुमेरात को अलल सुबह बैत फोरिक में 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल किया और इनकी लाशें भी वापस नहीं की। इसराइली फायरिंग में जख्मी होने वाले 2 दीगर फलस्तीनियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रंप ने अमेरिका सऊदी अरब जौहरी मुआहदे को इब्राहिम मुआहदे से मरबूत कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहदों में शामिल होने की सूरत में ही मुमकिन होगा। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि यह मुआहदा पुरअमन मकासद के लिए होगा और इसमें यूरेनियम की अफसूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब सऊदी अरब तवील अरसे से यह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि वह फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वाज़ेह रोड मैप के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएगा।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका हूसी हमलों का जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर यमन के हूसी ग्रुप ने तजारती जहाजों पर दोबारा हमला किया तो वाशिंगटन इसका जिम्मेदार तेहरान को ठहराएगा। हूसियों के सऊदी अरब के दो ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का ऐलान करने के बाद ट्रंप ने ईरान और हूसियों दोनों के लिए सख्त फौजी सजा की वार्निंग दी और हूसियों को ईरान का हामी ग्रुप करार दिया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी हूसियों से तनाजे से बाहर रहने का मुतालबा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने वाशिंगटन के साथ किए गए मुआहदों की बार बार खिलाफ वर्जी की है और अब वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। फिलिपाइन में मुनक़दा जनूब मशरक़ एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के इजलास के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान रूबियो ने कहा है कि ये लोग मुआहदे करते हैं फिर तकरीबन फौरन ही इन्हें तोड़ देते हैं या कहते हैं कि आइए मुआहदा बदल देते हैं। मुआहदे इस तरह नहीं चलते। उन्होंने दावा किया है कि तेहरान वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। ईरान पर पड़ने वाली जंगी बोझ का वजन बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो बिलाआखर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तरीकाकार को आंख के बदले आंख के अंदाज से ताबीर किया है। रूबियो ने कहा है कि जब तक वो होश में नहीं आते इनकी अदा की जाने वाली कीमत हर रात मजीद बढ़ती जाएगी। ऐसा लगता है कि अभी तक इन्हें समझ नहीं आई। ईरान पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। रूबियो ने यमन के हूसियों से भी मुतालबा किया है कि वो इलाकाई तनाजे में मजीद शामिल न हो। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस ग्रोह को ईरान की जानब से जंग में घसीटा जा रहा है। रूबियो ने मनीला में आसियान वसराय खारजा इजलास के मौके पर रूस के वजीर खारजा सरगे लावरोव से भी मुलाकात की और जारी करदा बयान में कहा है कि अमरीका यूक्रेन में जंग के खात्मे में मदद के लिए तामीरी किरदार अदा करने पर तैयार है। अमरीका 60 ममालिक का अहाता करने वाले नए दरामदी टैक्स नाफिज कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि भारत समेत जबरी मुशक्कत के खिलाफ इकदाम में नाकाम रहने वाले तमाम तजारती शराकत दारों पर 10 से 12.5% तक इजाफी महसूल आयद किए जाएंगे। ये ममालिक अमरीकी दरामदात के तकरीबन 99% हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। ये फैसला जुमा से नाफुजुलमल होगा। ताहम तवानाई की मसनूआत और अमरीका मैक्सिको कैनेडा तजारती मुआहदे उस्मा के तहत आने वाली अशिया को टैरिफ से मुस्तस्ना रखा जाएगा। माहरीन के मुताबिक इस इकदाम का असर अमरीकी सार्फीन पर कीमतों में इजाफे की सूरत में पड़ सकता है और आलमी तजारत में एक नई कशीदगी पैदा हो सकती है। भारत में इम्तिहानात में धोखादही के मुजाहरों में शिद्दत आने पर मोदी ने सख्त सजाओं का वादा किया है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी पर्चे लीक करने वालों को सख्त सजाएं देने और ऐसे वाकयात के लिए फौरी कार्रवाई की अदालतें कायम करने का मुतालबा किया है। ये बयान नई दिल्ली में वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे के साथ और हजारों तलबा की शिरकत से किए गए एहतजाजी मुजाहरे के बाद जारी किए गए हैं। मुजाहरे 2024 में दोबारा मुंतखब होने के बाद से मोदी को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजों में से एक बन गए। जनूबी यूरोप में गर्मी की शदीद लहर ने खौफनाक जंगलाती आग भड़का दी है। इटली, स्पेन, फ्रांस और यूनान में बेकाबू होती आग ने आमदोरफ्त और आम जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाकों से 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और बोर्डो और इटली के जजीरे सिसले में आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर हलाक हो गए हैं। इधर स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड और इसके जवार में जंगलाती आग के

बाईस हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहने की तवक्को है और हुकाम ने तेज हवाओं और गर्मी के बायस आग के मजीद फैलने के खतरे से खबरदार किया है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बढ़ते हुए असरात के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और वॉल स्ट्रीट में हिस्सों की कीमतें गिर गई हैं। ईरान के हमायत याफ्ता यमनी हूसियों के बहरा अहमर में तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाने के बाद जुमेरात को बैन अल-अक़वामी मियार के ब्रेंट खाम तेल की कीमत जुमेरात को $100 फी बैरल से तजावज कर गई है। इस हमले ने मशरक़ वुस्ता में जारी जंग को एक नए महाज तक फैला दिया है। जदीद टेक्नोलॉजियों पर भारी सरमायाकारी अखराज के बायस सरमायाकारों में बढ़ती हुई तशवीश के नतीजे में अल्फाबेट के हिस्स तकरीबन 6% गिर गए जबकि टेस्ला के हिस्स में 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। दिन के आगाज से तकरीबन 15 मिनट बाद डाउ जोन्स संती इंडेक्स 0.8% कमी के साथ 51,783.21 पॉइंट पर आ गया। इसी तरह S&P 500 इंडेक्स 0.8% गिर गया और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर मुश्तमिल नेस्टेक कंपोजिट इंडेक्स 1.5% गिरा। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं गुल पैम्बे और गाया है बारिश मानचो ने।